पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

तय न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: Weekends with Ajay.
1: No matter how you feel, get up, dress up, show up, because tomorrow is a brand new day.
0: Sundays with Pablo.
2: Yes, finally got there.
0: This is Sunrise Radio.
3: दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
1: अब हम 16 साल की मासूम लड़की नहीं रहे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुके हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
2: शिकवे शिकायतें तुमसे।
3: Watch सहर होने को है Monday to Friday 9 PM on Colors TV.
4: Okay, no one's got the right answer yet. That's okay. Let's have another crack at it.

0: A much loved song from an iconic film. Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. कुमार सानू लता जी तुझे देखा तो ये जाना सनम. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज ट्यूसडे की सुबह 11th अगस्त की सुबह शबनम साही के साथ. इदरीस इन हैकनी, अमरीन इन कराची, श्री इन स्लाव, थैंक यू फॉर योर मैसेजेस. टॉकिंग अबाउट व्हाट इट टेक्स फॉर एन एक्टर और एन एक्ट्रेस टू मेक इट इन बॉलीवुड. यू नो इंक्रीजिंगली वी सी द लाइक्स ऑफ रणवीर सिंह, Vicky Kaushal, Vikrant Massey. These guys are not conventionally that handsome, if you think about it. But my God, can they act? This was the point I'm trying to make. Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा listeners choice.
1: Listeners choice brought to you by Colors TV.
2: अगर आप उसे लड़खड़ाने भी नहीं देंगे, तो वो अपने आप को संभालना कैसे सीखेगी?
3: वो बाहर की नुकीली दुनिया के लिए नहीं तैयार है.
4: शायद समझ नहीं आएगी, पर याद रह जाएगी.
0: Follow Juhi's inspiring journey of justice, courage and dreams in Juhi Mui every Monday to Friday 7:30 PM only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Sunrise Radio par is ghante ka hamara hit of the hour. Old school given a new lick of paint, if you know what I mean.

0: taken from the 2002 thriller Kaante, Richa Sharma, Sukhvinder Singh, Mahive. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज ट्यूसडे द 11th ऑफ अगस्त की सुबह शबनम साही के साथ. यहाँ भी आप सुन रहे हैं, रहिएगा मेरे साथ पूरे 12 बजे तक. ओके, गुड मॉर्निंग.
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी.
2: अब हम 16 साल की मासूम लड़की नहीं रहे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुके हैं. आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है.
3: शिकवे शिकायतें तुमसे.
0: Watch Seher Hone Ko Hai Monday to Friday 9 PM on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by South Hole Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholetravel.co.uk. Shashwat Sachdev, Simran Chaudhary. Lut Le Gaya from Dhurandhar.

0: स्टेशन।
1: सूरज डूबा है यारो दो घुट, नशे के मारो रस्ते, भुला दो सारे घर बार के
0: मिक्स।

0: स्टेशन।
1: सूरज डूबा है यारो दो घुट, नशे के मारो रस्ते, भुला दो सारे घर बार के
0: मिक्स।

0: time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: And the time is 3:17. All right then, let's see what song you've chosen for your listener's choice.
2: Listener's choice, brought to you by Colors TV.
3: अब हम 16 साल की मासूम लड़की नहीं रहे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुके हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
4: शिकवे शिकायतें तुमसे।
5: Watch सहर होने को है Monday to Friday 9 PM on Colors.

फिगर बदल दे मेरा फ्लाइट प्लान, पता नहीं समझाऊं तुझे कैसे, अभी शायद लगे ये सजा, पता तुझको भी है मुझे मिलके, तुझे कितना आया।

0: back-to-back songs with Ambala Sweets. From your home to theirs. Make Raksha Bandhan memorable with an Ambala gift delivered to their door. Order at ambala.co.uk.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: आके यागने उदित नारायण
1: हरे हरे हरे
0: हम तो दिल से हारे
1: हम तो दिल से हारे
0: फ्रॉम द फिल्म जोश
1: हरे हरे हरे
0: हाउ मेनी टाइम्स अ डे डज अ हेल्थी ह्यूमन हार्ट बीट इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे
2: Celebrating 36 years of excellence.